0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेत। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: Aap sun rahe hain Qatar ka number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: हाय गाइस, इज अबाउट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी। जुरिता गांधी, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas. Lucas, world's favorite jeweler.
2: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन। रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Awesome.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।

0: वाओ।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
4: Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

जब वीकेंड के बाद अपना बिस्तर छोड़कर जो है ऑफिस आना पड़ता है तो होठ क्या है यार, आंखें भी सिल जाती हैं, ऐसा लगता है कि आंखें खुल ही नहीं रही हैं, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो आरएफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड जो है शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम जो है आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बातचीत करते हैं। एंड देखिए, कल वीकेंड जो है बहुत अच्छा गया। सबसे पहले तो जो है मैंने आप लोगों के साथ 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो है टाइम है वो बिताया, टेक्नोलॉजी की बात करी, मस्ती मजे के तड़का मार के, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जो है मैंने क्या क्या कुछ खास किया, कैसी फोटोज ली, वो सब आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में। और आपको भी यही ड्रिल करनी है, आपको जो है फोन उठाना है, व्हाट्सएप करना है और ये बताना है कि आपका वीकेंड आखिर कैसा रहा, क्या कुछ आपने खास किया। 3311106 पर आकर 3311106। और बाकी देखिए यार, बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, मस्ती मजा जारी रखेंगे और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में बात करनी है वो भी जारी रखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बस स्टे ट्यून रहना है 106.3 रेडियो ऑलिव पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आपके लिए मैं लगा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, ये भी इंजॉय कीजिए। पति पत्नी और वो दो से ट्रैक आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: जी, ये था अरमान मलिक की आवाज में एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक ओनली ऑन 106.3 रेडियो एलएस। मैं हूँ आपकी कसूर, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर बातचीत जारी रख रहे हैं अपनी। अब देखिए यार, मेरे ऑफिस में ना पता नहीं किसको ऑब्सेशन है ठंडक से, कि ऑफिस में एसी का टेम्परेचर एकदम गिरा के रखा जाता है। मतलब बाहर जो है भले ही क्यों ना ऐसे शोले बरस रहे हों, लेकिन जो है ऐसे अंदर जो है ऐसे बर्फ के गोले जो है वो बरसने चाहिए ऐसा लगता है। अभी मैं स्टूडियो में आई हूँ और इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है कि मैं शिवर कर रही हूँ। और अभी मैंने जो है आप लोगों को टेम्परेचर बताने के लिए जैसे ही अपना फोन उठाया, वैसे ही इसमें जो है मुझे 39 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। मैं बोलूँ कहाँ से 39 डिग्री सेल्सियस है, फील्स लाइक 19 डिग्री सेल्सियस। खैर, बाहर का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है आपको बता देती हूँ। सो अगर आप लोग अभी तक बाहर नहीं निकले हैं अपने घरों से या जस्ट अभी निकले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज दोहा में करंट टेम्परेचर जो है इस वक्त हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। यानी जो है गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन देखिए आपको राहत बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो एट इट्स पीक होने वाली है। तो बस इस हीट को बीट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ म्यूजिकल बीट्स जो है वो जरूरी है। सो इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपकी कूलनेस को बढ़ाने के लिए आपके रेडियो सेट्स पर। सो फिलहाल ये गाना जो है इंजॉय करके जल्दी से आओ, उसके बाद जरा बॉलीवुड की बात कर लेंगे कि आने वाले महीने में क्या कुछ खास जो है वो आपको देखने मिलने वाला है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

देखो यार, अब ये जो गाना है ना, ये मुझे रोमांस की याद नहीं दिलाता है, ये गाना मुझे मीम्स की याद दिलाता है। यानी इतना ज्यादा क्रिंज कंटेंट जो है वो इस गाने पे बन चुका है कि अब हम भूल चुके हैं कि इस मूवी में और इस गाने में कौन से एक्टर एक्ट्रेस थे। क्या आपको पता है? अगर पता है तो 3311063 पर आकर जल्दी से बता दो। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बातचीत जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए यार, अगर बात जो है लाइफ को मस्त बनाने की हो तो हम बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। बॉलीवुड एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ को मस्त बनाने में। सो बस बॉलीवुड रिलीजेस की बात कर लेते हैं, ऐसी मूवीज जो रिलीज होने वाली है। देखिए बॉलीवुड तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉलीवुड भी इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइडरमैन को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो आने वाली है। सो ये देखने के लिए बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो बॉलीवुड फैंस हैं उनके लिए जो है राजकुमार राव की जो है एक अमेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा मूवी जो है वो आने वाली है। उसके बाद इसको जो है थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है, क्योंकि इसको क्लैश हो रहा था स्पाइडरमैन के साथ एंड सनी देओल की बंटवारा के साथ एंड आवारापन टू के साथ। सो आवारापन टू की तो देखो अलग हाइप बनी हुई है, एंड मुझे नहीं लगता कि कि आवारापन से कोई और मूवी जो है वो कम्पीट करना चाहेगी। थोड़ी सी होप्स कम है, क्योंकि ऑब्वियसली रिक्रिएशन को थोड़ा सा कम पसंद किया जाता है, लेकिन इमरान हाशमी को जितना प्यार जो है इस वक्त दे रही है जेंजी जनता, मुझे लगता है कि ये मूवी चल भी सकती है। तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, मैं तो अजम्पशन पे चल रही हूँ। आप बताइए आप कौन सी मूवी रिलीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे भाई तेरा स्टार है 29 जुलाई को अभी रिलीज होने वाली, जिसमें राघव जुयाल जो है वो अमेजिंग अमेजिंग एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। एक रात की स्टोरी लग रही है पूरी। लेकिन इसका एक नया गाना जो है वो भी रिलीज हो चुका है, सो एक बार जाकर जरूर से चेक कर लेना। फिलहाल 3311063 पर आकर मुझे फटाफट से मैसेज कर दो कि क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप लोग, और एक अमेजिंग गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय करो। और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: तो देखिए जी कैलाश खेर जी की आवाज में आपने अमेजिंग वाला गाना एंजॉय किया. मैं हूँ आपकी कसूर, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है. अब देखिए यार, लाइफ को मस्त करने के लिए स्ट्रेस को तो कम करना पड़ेगा, इसीलिए आती हूँ और ऐसे हर रोज फनी फनी तरीके आपको मैं बताती हूँ जिससे आपका स्ट्रेस जो है थोड़ा सा तो कम हो ही सकता है. तो देखो यार, एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्ट्रेस को कम करने का, लेकिन ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है या आपको जो जो आपके साथ जा रहा है उसको भी महंगा पड़ सकता है. सो देखिए, एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करने का कि आप शॉपिंग कर लीजिए. और शॉपिंग से मेरा मतलब खैर ये नहीं है कि आप किसी मॉल में जाइए और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की, लग्जरियस चीज़ों की शॉपिंग कीजिए. आपके दिल को, आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उस चीज़ की शॉपिंग कीजिए. अब चाहे वो एक झुमका लेना हो, एक यू नो आपकी फेवरेट कॉफ़ी खरीदनी हो, कुछ भी आप खरीदते हैं अगर अपने लिए तो आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार फाइनली चलो देखो मैं खुद को खुश करने की कैपेबल हूँ. अब देखिए, अब खर्चा बहुत हो रहा था तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव निकाला है लोगों ने आपको सेटिस्फाई करने के लिए. एक ऐसी वेबसाइट आ चुकी है जहाँ पर जाकर आप फेक शॉपिंग कर सकते हैं. आपको पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन आपको जो फील है वो पूरा का पूरा वैसे ही आएगा जैसे यार हम तो शॉपिंग कर रहे हैं. आपको क्या लगता है बताइए इस वेबसाइट के बारे में 3311063 पर. मैं फिलहाल चलती हूँ, ऑल ऑफ अपडेट्स लेकर थोड़ी सी देर में वापस लौट कर आऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. ये गाना

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: गाने का नाम रमता जोगी, आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिफर, और इतना ज्यादा बढ़िया गाना था कि मैं खो गई थी थोड़ा सा। देखिए मैं जो है ऐश्वर्या राय की एक अलग टाइप की तारीफ जो है वो आज आपके सामने करना चाहती हूँ कि आपने जो है पोइट्री पढ़ी होगी, आपने पोइट्री जो है सुनी भी होगी, लेकिन अगर आपने पोइट्री आज तक देखी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ताल मूवी में ऐश्वर्या राय को देखना चाहिए। ओह माय गॉड, और स्पेशली रमता जोगी गाने में तो क्या अमेजिंग ऑसम खूबसूरत लगी है वो। फिलहाल मैं हूँ आपकी कज़न्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपके लिए शो लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और देखिए अब वक्त हो गया है आपसे आपका ओपिनियन जानने का, तो देखिए यार कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मैं आपसे जो है आपका नहीं जानना चाहती, लेकिन बस आज एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ क्योंकि कल ही मैं किसी से लड़ रही थी इस बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर्स को इस लड़ाई में जो है मैं अपने साथ कर लूँ। सो देखिए लड़ाई ये थी कि जो है मैं कल जहाँ पर गई थी वहाँ पर मैं बहुत सारी फोटोज ले रही थी एंड हम जो है एक ग्रुप में गए थे, सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार कौन बेटर फोटो लेता है, लड़के जो है वो एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़के जो है क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहीं लड़कियाँ फोटो जब किसी की क्लिक करती है तो वो एस्थेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देती है कि बाल जो है वो फ्लोई है या नहीं है, कोई मोमेंट्स कैप्चर हो जाए, कोई कैंडिड जो है कुछ अच्छी सी फोटो आ जाए, और लड़के वहीं पर क्लैरिटी में देखते हैं कि अरे सब कुछ जूम्ड है कि नहीं है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन लड़कियाँ इतना नहीं सोचती। आप बताइए आपके हिसाब से कौन बेटर फोटोज जो है वो खींचता है, 3311063 पर आकर उसके बाद जो है मतलब आप लोग जो है मुझे मैसेज कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो है रिसर्च क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, एंड जब बहुत सारे लोगों का जो है यू नो एक ओपिनियन लिया जाता है तो उसमें वोटिंग में कौन जीता है। 3311063 ये जो है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि लड़के बेटर फोटोज लेते हैं या लड़कियां बेटर फोटोज लेती हैं। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, और नंबर अगर नहीं सुना है तो फिर से बता देती हूँ 3311063। फिलहाल एक अमेजिंग गाना स्त्री मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा

0: देखिए डिस्को का टाइम तो नहीं है अभी, अभी हमारे बातचीत करने का टाइम है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम बातें कर रहे हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसल संसु, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम बातचीत जो है बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ, जिस पे जो है मैं अपने दोस्तों से जो है कल लड़ाई कर रही थी, और अब जो है हम ये लड़ाई ड्रैग करके इतने जोश में लड़ाई कर ली कि गले ही खराब हो गया। ओके सो हम ये जो लड़ाई है ये ड्रैग करके अभी ऑन एयर में लेकर आ गए, जहां पर हम आप सबसे कह रहे हैं कि यार आप भी इस लड़ाई में जुड़िए और मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। सो देखिए लड़ाई इस बात पे हो रही थी कि यार कौन बेटर फोटोज खींचता है। अब रिसर्च भी मेरे पास रखी है, लेकिन आप में से किसी ने एक जो है बहुत ही प्यारा मैसेज कर दिया है, मुझे ऑडियो नोट भेजा है अपना ओपिनियन देते हुए। तो पहले हम इनकी ऑडियो सुनेंगे कि इनको क्या लगता है, लड़के बेटर फोटो लेते हैं या फिर लड़कियां फोटो लेती हैं। तो हेलो हंजी बताइए।
1: हाय रेडियो ऑलिव, वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है विनायक और आज ये क्वेश्चन जो आपने किया है, फोटो कौन बेटर लेता है, लड़का या फिर लड़की, आर ओपिनियन इज, मैं और मेरे दोस्त भी यही डिस्कस कर रहे थे। मेरा दोस्त मेरे साथ है, उसका नाम है राम। हम लोग ये कह रहे थे कि लड़का ही सबसे अच्छा फोटो लेता है, वो चाहे एंगल हो या फिर क्लैरिटी हो या फिर कोई स्पेशल मोमेंट हो, बॉयज आर बेस्ट टू टेक पिक्चर एवरीवेयर, बाकी सब जियो बिंदास।
0: देखिए जियो बिंदास तो आपने बढ़िया तरीके से कह दिया है और आपकी बात से मैं अग्री भी करती हूँ, लड़के जो है वो अच्छी फोटोज लेते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि लड़कों से इतनी मिन्नतें क्यों करनी पड़ती हैं विनायक जी, क्यों लड़कों के सामने इतना प्लीड करना पड़ता है कि प्लीज हमारी एक फोटो ले दो और फिर बेमन से जो है एक फोटो लेते हैं। वहीं पर लड़कियां जो है वो फुल वाइब में रहती है, वो तैयार होकर ही इसीलिए जाती है कि हम भी फोटो खींचेंगे और अपनी फोटो भी खिंचवाएंगे। सो बस अब आपने जब इतना बताया है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि लड़कों को इतनी मिन्नतें क्यों करनी पड़ती है कि प्लीज प्लीज प्लीज मेरी फोटो खींच दो। 3311063 आप भी जो है इस डिस्कशन में जो है कूद सकते हैं, जंप मार सकते हैं एंड आ सकते हैं। आप बताइए मुझे लड़के बेटर फोटोज लेते हैं या लड़कियां बेटर फोटोज लेती हैं। थोड़ी सी देर में आके जो है रिसर्च भी बताऊंगी, फिलहाल जो है ड्रामेबाज गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

सच बताऊं मुझे इस गाने पे स्टोरी लगाने के लिए कल एक फोटो चाहिए थी जिसके लिए सारा कलेश हुआ, एंड उसके बाद हमने जो है ये टॉपिक हम ऑन ईयर तक जो है घसीट के ले आए कि बेटर फोटोज कौन लेता है, लड़के या फिर लड़कियां। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली बातें हम करते हैं और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है बातचीत जारी रखते हैं। सो अब देखिए यार, लड़कियों का जो है मेन मोटिव होता है फोटो खींचने और खिंचवाने के पीछे की एस्थेटिक फोटो आए, वो जो है एक मोमेंट कैप्चर हो जाए एंड बस वो प्रिटी लग रही हो, एंड लड़कियाँ ऑटोमेटिकली प्रिटी लगती ही है। अब लड़के जो है ये जानते हैं कि लड़की जो है वो प्रिटी लग रही है, ये लगेगी ही, तो क्या होता है कि फोटो में वो एंगल्स पे ध्यान देते हैं, वो शार्पनेस पे ध्यान देते हैं कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है फोटो की, तो इसी बात पे जो है कई बार लड़ाई हो जाती है। विनायक जी ने थोड़ी देर पहले ऑडियो नोट भेजा था जिसमें उन्होंने दावा कर दिया था कि नहीं नहीं कशिश जी देखिए लड़के सबसे बेस्ट फोटो लेते हैं। सो अब मैं रिसर्च की बात कर लेती हूँ कि साइंस जो है वो क्या कहता है एंड रिसर्च क्या कहता है। सो अगर कैमरा एंगल्स की बात करें सो उसमें नो डाउट लड़के जो है वो थोड़े से आगे होते हैं, लेकिन कैमरा एंगल्स जिसमें जो है लड़कियां प्रिटी दिखें वो हमेशा जो है लड़कियों का प्रोस्पेक्टिव बेटर होता है। यानी अगर हम बात करें लैंडस्केप फोटोग्राफी की, फूड फोटोग्राफी की, या किसी और चीज़ की फ़ोटो खींचने की जो है एक जिंदा इंसान नहीं है उसमें लड़के ज़्यादा बेटर होते हैं, एंड वहीं पर अगर मैं बात करूँ पर्सन की फ़ोटो खींचने में सो उसमें लड़कियों का आइडिया जो है वो बेटर होता है, ये कहती है रिसर्च। मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च कह रही है। सो क्राउड्स की, स्ट्रेंजर्स की, लैंडस्केप की फ़ोटोज़ जो है वो कई बार लड़के बेटर खींचते हैं, लेकिन एक सिंगल अगर पोर्ट्रेट उन्हें खींचने बोला जाए तो कहीं वो लड़कियों से थोड़े से पीछे रह जाते हैं। बाकी देखिए अपनी अपनी क्रिएटिविटी है फोटोग्राफी, तो बाकी आपको क्या लगता है अभी भी आप मुझे बता सकते हैं 3111063 पर। फिलहाल अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी फोटो जो है वो खींची हुई है तो उसके लिए एक बढ़िया बैकग्राउंड गाना जो है मैं ले आई हूँ आपके लिए। गाने का नाम आफरी आफरी, डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है ये गाना। सो कोक स्टूडियो का ये ट्रैक जो है आप एंजॉय करके जल्दी से आइए, मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। आने के बाद जरा आपको मैं जो है मूवी भी रिकमेंड करूंगी कि आज आप क्या देख सकते हैं, और ये भी आपको बताऊंगी कि यार फैशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

मन की डोरी बांध ही जा चुकी है। वैसे डोरी से याद आया, बहुत सारी डोरी वाली चीजें आजकल जो है फैशन की दुनिया में एंट्री मार चुकी हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ़ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, अगर हम बात करें फैशन की ना, सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं जो कि हमारी वार्डरोब में ऑलरेडी रखी हैं, लेकिन जो है हमें लगता है कि यार जब तक इसको स्टाइल करेंगे तब तक जो है इसका टाइम निकल जाएगा ट्रेंड का। सो देखिए, अगर अभी आपके पास कोई पतली सी डोरी वाली बेल्ट जो है, यानी कोई रस्सी की जैसी दिखने वाली बेल्ट जो है, या किसी मोतियों की बेल्ट है या चेन वाली बेल्ट है, उसे निकाल लीजिए, क्योंकि चाहे आपके एथनिक जो है लुक्स हो उनके साथ या फिर आपके वेस्टर्न लुक हो उनके साथ, ये बहुत बढ़िया तरीके से जो है इस वक्त जा रही है। एंड इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वेस्ट चेन्स को नया जो है एक लुक दे दिया है, जिसमें वो कोई भी धागा उठा रहे हैं, उसकी ब्रेड बना रहे हैं और उसको कमर पे बांध ले रहे हैं। तो देखिए, आप भी ये वाले जो ट्रिक है ये ट्राई कर सकते हैं एंड मुझे बता सकते हैं कि यार आपका लुक जो है वो किस तरीके से टर्न आउट हुआ। मैं भी ढूंढती हूँ कि मेरे पास अगर कोई ऐसी वेस्टिन मिल जाए तो मैं भी आपको जो है लुक रिक्रिएट करके इंस्टाग्राम पे दिखा दूंगी। वैसे हाँ, ये याद, शिट, आपको तो मैं याद दिलाना ही भूल गई कि रेडियो ऑलिव का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको रेडियो ऑलिव के सभी

आरजेज जो है वहां पर मिल जाएंगी। एंड अगर मैं बात करूँ कंटेंट की तो बहुत फन कंटेंट हम वहां पे डेली डेली पोस्ट करते हैं। सो चलो जाओ जल्दी से जाके फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो एंड साथ में जो है अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें इंजॉय करते रहो। फिलहाल है जवानी तो इश्क होना है से अमेजिंग वाला ट्रैक, इंजॉय करो। और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: मूवी का नाम दो लफ्जों की कहानी एंड अरमान मलिक की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसुस शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत जारी रख रहे हैं। एंड देखिए यार, अमेजिंग गाने तो आप सुन ही रहे हैं लेकिन साथ में आपका जो है वीकेंड कैसा रहा इस पर भी हम बात कर रहे थे। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि यार वीकेंड तो काम करते हुए निकल गया, जिस पर हम बात भी कर रहे थे थर्सडे को कि यार वीकेंड जो है वो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वैसे कल तो मैंने अपने वीकेंड को पूरी तरीके से जो है यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की है। अब मैंने क्या किया था कि ऑफिस से जाते ही थर्सडे को मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, मैंने बर्तन धो के रख दिए थे, मैंने सिर्फ एक प्लेट निकाल के रखी थी कि इस प्लेट में ही खाना खाऊंगी और तभी की तभी इसको धो के रख दूंगी। साथ में मैंने कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे तो वो धुल गए थे, वो सुखा दिए थे, तो मुझे जो है फ्राइडे को ऐसा कुछ मेजर ज्यादा काम था नहीं। तो उसके बाद मैंने जो है अब सोचा कि मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन फिर दोपहर में बाहर जाया कैसे जाए, तो फिर जो बच्चे कुछ काम थे वो करने के बाद शाम को अपन ने डिसाइड किया कि चलो यार चलते हैं किसी अच्छी जगह घूम कर आते। लेकिन ह्यूमिडिटी का आलम ऐसा था कि जहां एसी ना हो वहां नहीं जा सकते, तो बस फिर मैं गई एक बहुत ही अमेजिंग जगह पर। आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी वहां पर ऑलरेडी जा चुके हो, लेकिन मैं पहली बार गई थी। वेंडम मॉल की मैं बात कर रही हूँ एंड वहां पर मुझे ऐसा लगा था कि यार बस हर जगह पर एक फोटो तो मेरी होनी ही चाहिए, एक फोटो और ले दो कोई, एक फोटो और ले दो, एक वीडियो भी बना दो, ओ माय गॉड। उसके बाद आने के बाद जब मैं इंस्टाग्राम पे जो है ये फोटोज पोस्ट कर रही थी तो मुझे लिटरली जो यू नो 48 मिनट्स लगे हैं एक कैप्शन ढूंढने में। एंड उसमें भी अगर आप जाके वो पोस्ट देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे तो आपको समझ आएगा कि मैंने कैप्शन अभी भी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ 3 इमोजी डाल दिए हैं क्योंकि मुझे कैप्शन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी कैप्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था यार देखो। फिलहाल आप मुझे बता सकते हैं कि यार आपको कैप्शन ढूंढने में दिक्कत जो है होती है या नहीं होती है। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए, बाकी अमेजिंग बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

देखिए यूं तो मैंने अपने टेक्नोलॉजी वाले शो में यानी टेक टॉक पे कल आपको बहुत सारी अमेजिंग टेक रिलेटेड डिटेल्स दे दी थी, लेकिन अगर आपने कल वो बाय चांस मिस कर दी है तो मैं अभी जो है एक इम्पोर्टेंट वाली डिटेल आपको फिर बताने के लिए आ गई हूँ। सो वेलकम जी एंड गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बातचीत जो है वो कर रहे हैं। एंड अब देखिए, अगर आपको जो है टाइपिंग करने में बहुत आलस आती है, स्पेशली अगर आपको चैट्स की बात करूँ मैं या किसी से बात करने में जो है आपको टाइप करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, तो आपके लिए जो है एक नया फीचर जो है AI टूल जो है वो लॉन्च हो चुका है। हाँ, पहले भी आप अपने कीबोर्ड में जो है माइक का बटन दबाकर ऑडियो से जो है आप टाइपिंग कर सकते थे, लेकिन अब आपके लिए जो है और प्रिसाइज टाइपिंग के लिए ये AI टूल आ गया है। AI टूल का नाम है विस्पर फ्लो, जो लॉन्च हुआ है आपकी नेचुरल वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसका कोर फीचर जो है वो इंग्लिश कोड मिक्स सपोर्ट करता है, ताकि इंडियन यूजर्स जो है या जो हमारे देसी यूजर्स है जो हिंदी उर्दू में बात करते हैं उनको जो है मतलब बिना सोचे समझे नेचुरल तरीके से जो है वो टाइप कर पाए। तो अगर आप अब बीच में ओ करते हैं तो वो जो है समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो देखो यार, आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम तत्पर है। फिलहाल मैं भी आपको अमेजिंग गाने सुनाने के लिए एकदम तत्पर हूँ। सो ये अमेजिंग वाला ट्रैक एंजॉय करके आइए, फिर मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

0: ऑन बातचीत जो है वो हमने कर ली है, लेकिन अब मेरे यहाँ से आपको टाटा बाय बाय बोल कर जाने का वक्त आ गया है। मैं हूँ आपकी कसर शो, आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे थे 106.3 रेडियो ऑलिव पर, लेकिन अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आई नो अगर आज आपकी छुट्टी है, सैटरडे है, तो आप फन कर रहे होगे, लेकिन अब मेरा फन करने का वक्त शुरू हो गया है। मैं यहाँ से जाती हूँ, जरा खाना वाना खाती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी जो है आपको धीरे धीरे हौले हौले चलानी है, उसके बाद खाना खाते रहना है, इस गर्मी के मौसम में पानी पीते रहना है, सनस्क्रीन लगानी है, एंड मुझे याद करते रहना है। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगी, साथ में अगर आप व्हाट्सएप पर बातचीत करना चाहते हैं तो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर भी आप बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल सेम टाइम सेम प्लेस, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, बाय बाय।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम जर्नी के एक स्टार्ट करने वाले हैं गानों के साथ, बातों के साथ, किस्सों के साथ, सिलसिलों के साथ। तो फिर भाई इंतजार किस बात का है, अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हुए आज के जर्नी को किक स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड, ये है ऑलिव रिचार्ज ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूं अनिल कपूर।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं। स्कूल में जब मैं था तो मेरे स्कूल में मेरे केमिस्ट्री लैब के ऊपर जो है एक बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा रहता था। और उस कोट में ये बताया गया है कि व्हेन यू विन से नथिंग, व्हेन यू लूज से लेस। बेसिकली उसका मतलब यही था कि जीत और हार में ग्रेस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमने देखा है कि जब लोग जीत जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस करते हैं, जब हार जाते हैं तो बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। हार और जीत में एक ही जैसा व्यवहार रखना, एक समरस जो हम कहते हैं ना कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, जैसे MS धोनी है, हार हो जीत हो एक ही जैसा है उनके लिए। बहुत रेयरली हमने उन्हें सेलिब्रेट करते हुए देखा या फिर बहुत रेयरली हमने उन्हें आउटरेज दिखाते हुए देखा है। एक ग्रेस मेंटेन करते हुए जाना हार और जीत में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स हमें बेसिकली यही सिखाता है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई एक ऐसी मूवी के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिसको शायद हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इस मूवी का नाम है 100 ईयर्स। ये एक साईफाई शॉर्ट फिल्म है जिसमें जॉन मैल्कोविच ने जो है एक्टिंग की है, और इसकी डायरेक्टर जो है वो है रॉबर्ट रॉड्रिगेस। तो 2015 में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद इसे एक हाई टेक सेफ में जो है लॉक करके रखा है, जो ऑटोमेटिकली नवंबर 18, 2115 में खुलेगा, ठीक है। अब इस मूवी का टैगलाइन है जिससे यूज करके इसे एडवर्टाइज किया जाता है, वो है द मूवी यू विल नेवर सी। और 1000 एक्सक्लूसिव मेटल टिकट्स जो हैं उस टाइम के इन्फ्लुएंशियल लोगों को बांटे गए थे, ताकि उनके डिसेंडेंट्स जो हैं इसके ऑफिशियल प्रीमियर को देख पाए, जो फ्रांस में होने वाला है। काफ़ी यूनिक एक आइडिया है ये। एनीवे, इस मूवी को हम देखने नहीं वाले, मगर ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये एक काफ़ी इंट्रीगिंग सा एक थॉट लगा मुझे। बट एनीवे, द मूवी वी विल नेवर सी, क्या ही करेंगे उसके बारे में जान के। सच ए काउंटर इंट्यूटिव थॉट, राइट। बट या, इससे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि किस तरीके से इन्होंने ये मूवी जो है एक्चुअली लुई 13th कॉर्निया के साथ पार्टनरशिप में बनाई गई थी। तो ये सेंचुरी लॉन्ग प्रोसेस को दिखा रहे हैं जिससे हर एक डिकेंडर को बनाया जाता है ताकि लग्जरी स्पिरिट को अपहोल्ड किया जाए, समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, मैं यही सोचता हूँ कि यार मूवी तो इंसान थोड़ा चिल करके, रिलैक्स करके देखने के लिए ही देखता है, या फिर थोड़ा अनवाइंड करने के लिए देखता है। इन्होंने 100 साल का वेटिंग पीरियड लगा दिया है। बट एनीवे, कैसी होगी इसकी क्रिएटिविटी, शायद मेरे डिसेंडेंट्स या फिर उन इन्फ्लुएंशियल लोगों के डिसेंडेंट्स देख पाएंगे। तो 100 साल बाद अगर हमारे डिसेंडेंट्स इनके बारे में बात करेंगे तो फिर जान पाएंगे शायद हम। फिलहाल यहाँ पे यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।

0: आप सभी को फिर से एक और बार इस्तकबाल है। यह है रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जमाना बदल चुका है, चीजें बदल रही हैं। वो सुना होगा ना हमने एक बंदे को बोलते हुए, जिस बात बदल गई, बात बदल गई, किस्मत बदल गई, वैसे ही चीजें बदलती जा रही हैं। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क का एरा। ठीक है, एक जमाना था जब सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी होता था, मगर आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है तो हम स्मार्ट तरीके से भी हार्ड वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ शॉर्टकट लेने हैं। तो देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे हेल्प के लिए बनी है, तो उसे एज अ टूल हम यूज करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, AI की बात चलती है आजकल। AI का हम जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। AI को यूज करके हम अपने वर्कलोड को बहुत हद तक कम कर सकते हैं ताकि हम और प्रोडक्टिव हो जाए। सिमिलरली, ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करके हम धीरे धीरे अपने लाइफ को और आसान बना सकते हैं ताकि हम ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन मेंटेन कर पाए अच्छे से। मगर बात यह है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हमारे जहन में घुस चुकी है कि हमारे गर्दन झुक गए हैं टेक्नोलॉजी के सामने। क्योंकि अगर चार लोग एक साथ बैठे हैं तो उनकी सब गर्दन झुके हुए एकदम स्क्रीन में देखते रहते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि काम टेक्नोलॉजी के यूज़ से करो ताकि इंसान फ्री हो जाए और आपस में गुफ्तगू कर पाए। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

जब भी बिरयानी देखता हूँ मेरे मन में यही आता है, क्योंकि मेरे दिल के चैन को अगर कोई पूरी तरीके से ठीक कर सकता है वो बिरयानी है। मंदी भी चल सकता है वैसे, बट हाँ बेसिकली खाना। मगर मैं इतना ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ कि मुझे ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है जो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। और यही बात जब मैं अपनी मम्मी से कर रहा था, तो मम्मी ने मेरे से बोला कि ये सब तो ठीक है, मगर फास्टिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर थोड़ा हेल्थी रहना है। तो मैंने बोला, क्या मम्मी आप मुझे वेट शेम और बॉडी शेम कर रहे हो? तो मम्मी ने बोला, नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर रही, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा राजा बेटा जो है थोड़ा हेल्थी रहे। तो फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं फास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे बॉडी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं रेगुलरली तो बॉडी जो है ऑटोफैजी मोड में चला जाता है, जिससे फैट बर्न होने लग जाता है और उसके साथ साथ बॉडी डिटॉक्सिफाई करने लग जाती है अपने आप से। तो बीच बीच में फास्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा भी है, ये आपको बहुत ही लाइट फील कराएगा और हेल्थी रखेगा। मगर एक और फास्टिंग है आजकल के ज़माने में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa. Radio

आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, ऑलिव रिचार्ज में मैं हूँ आपका मेजबान सदैव। और भाई फास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, और इस जमाने में एक फास्टिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको करना चाहिए, उसके बारे में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, और वो है डिजिटल फास्टिंग। जी हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ा फास्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी जल्दी हम ये फास्ट लेना शुरू करें उतना हमारा मेंटल वेलबींग भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में एक हद से ज़्यादा वक्त गुजारना जो है हमें बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीच बीच में अगर आप डिजिटल फास्टिंग करोगे तो ब्रेन भी आपका डिटॉक्सिफाई होगा, आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए यार, इंस्टाग्राम फेसबुक में कनेक्ट तो आजकल हर कोई कर रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाओ ना, वो आजकल रेयर हो रहा है। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उन हॉबीज के बारे में बात करना चाहूंगा जो सही में आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रिवायर कर सकते हैं। तो सबसे पहली हॉबी है मिरर गेजिंग, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 10 मिनट वहां पे स्पेंड करो। धीरे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जो है सारी चीजें छटती जाएंगी और जो कोर सेल्फ है आपका वो बाहर आएगा, और उससे बात करो, आप मिरर गेजिंग करो, बात करो, धीरे धीरे अपने आप को रिवायर करने की कोशिश करो, अफर्मेशंस बोलो, आप किस तरीके से अपने आप को बेटर करना चाहते हो वैसी बातें करो, ताकि जो है ये बात आपके जहन में बैठ जाए, और हर दिन करके देखो आप, सही में आपके लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। उसके साथ साथ एक और हैबिट है जो आपके माइंड को रिवाइव कर सकती है, आपके ब्रेन को रिवाइव कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वो पाट दे तूड़ा।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106।

0: आप सभी को वैसे एक और बार इस्तकबाल है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और हम बात कर रहे थे उन हॉबीज के बारे में, हैबिट्स के बारे में जो हम अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हम अपने माइंड को, हमारे ब्रेन को रिवायर कर पाए। तो पहले हमने बात की थी मिरर गेजिंग की, और अभी मैं बात करने वाला हूं इमेजिनरी वर्ल्ड बिल्डिंग की। आप अपने मन में एक शहर बनाइए, उस शहर को एक नाम दीजिए, गलियों को नाम दीजिए, रस्तों को नाम दीजिए, लैंडमार्क को नाम दीजिए, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को क्रिएट कीजिए। अपने अंदर ही, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर एक दुनिया आप बनाइए, क्रिएट कीजिए, इमेजिनेशन में क्रिएट कीजिए। इससे एक हमारी इमेजिनेशन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और आजकल के AI के इंटरवेंशन वाले ज़माने में एक अच्छा इमेजिनेशन रखना बहुत ही ज़रूरी है भाई। तो यही बात याद दिलाते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: कूल सॉन्ग।
4: या मिस्टर राइट।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी में हुई होगी या फिर होने वाली होगी या फिर कभी ना कभी आपने इसके बारे में सोचा होगा। अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने का आपने जरूर सोचा होगा, है ना। आइडियाज पे आइडियाज लेकर आए होंगे कि भाई चल ये करते हैं, वो धंधा शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं। मुझे याद आया कि जब मैं कॉलेज से निकला था, मैं एक जगह पे इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बुला के बोला कि भाई ये काम करते हैं हम, अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए ना एक ऐप बनाते हैं, ऊबर जैसा एक ऐप हम बनाएंगे और हम दे देंगे, हम पैसे भी बनाएंगे, रिच भी हो जाएंगे। और सही, मैंने बोला सही है यार, बहुत बढ़िया आइडिया, मगर मुझे एक बात बता, ये ऐप बनाएगा कौन? हमें तो नहीं आता ऐप बनाना मुझे तो नहीं आता, मैं मार्केटिंग देख लूंगा, तू बता। बोला नहीं भाई हम कर लेंगे। तो फिर हमने 3-4 और लड़कों को अपने प्लान में लिया, हमने बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म किया क्या क्या चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, फंक्शनैलिटीज़ तक डिसाइड कर ली। मगर फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार इसके लिए वक्त चाहिए और थोड़े पैसे भी चाहिए, जो दोनों हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने वो बिजनेस प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा बिजनेस प्लान जो है ऑन किया, जो था केरला के लोगों को ऑथेंटिक बहुत ही बढ़िया स्वाद देना, वो भी नॉर्थ इंडियन स्वीट्स का, नॉर्थ इंडियन चाट का। मैंने आइडिया प्रपोज किया, जनता में हर्षोल्लास की लहर जो है दौड़ गई, लोग एकदम खुश हो गए। मगर फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये सब करने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर से वो प्लान हमने शेल्फ में रख दिया। उसके बाद हमने एक और प्लान बनाया, हमने सोचा कि एक दोस्त का प्लॉट जो है थोड़ा बड़ा है, वहाँ पर हम कुछ बनाएंगे, कुछ सेट करेंगे। मगर उसके लिए भी हमने रियलाइज़ किया कि पैसे चाहिए और वक्त चाहिए, ये दोनों हमारे पास नहीं थे, तो हमने फिर से इस प्लान को शेल्फ कर दिया। अभी भी जब हम बात करते हैं तो हम उन बिजनेस प्लान्स के बारे में ऐसे रेमिनिसाइज करते हैं कि यार यार वो प्लान अगर किक स्टार्ट कर लेते तो ये हो जाता। बट दोस्तों के साथ बिजनेस प्लान बनाने का मज़ा अलग है, हमें 100% श्योरिटी है कि ये होने वाला नहीं है, मगर प्लान करते वक्त जो मज़ा आता है ना, जो एड्रेनलिन पंप होता है हमारे शरीर में, हम सोचते हैं कि भाई दुनिया कदमों के नीचे है, मगर बाद में जब पैसे की रियलिटी मुंह पे एकदम स्पर्श करके निकल जाती है तो हमें पता चलता है कि नहीं भाई काम ही कर लेते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ बिजनेस आइडिया बनाए हैं तो बताइए मुझे मैसेज करके 3311063 पर। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंद।

0: स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है. रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में.
1: लूनू, where the world comes to shop. Just feel like
2: you're home. Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और 5 ही अभी बाकी है। इसलिए सिमरन आई है आपके साथ एंजॉय करने के लिए और आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाने के लिए। जाते जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलवे 106.3 FM और मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

क्यों मेरा इंतजार था क्या? देखो यार, मुझे तो आपका इंतजार था। हफ्ते का पहला दिन जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी शुरू हो चुका है जबरदस्त इवनिंग सिमरन कौर आ चुकी है और ये चार घंटे अपने होने वाले हैं। तो मेरे बगैर जो आपने कल का फ्राइडे बिताया और थर्सडे की नाइट बिताई, मुझे बताया नहीं आपने कि कैसा रहा आपका आज का दिन, कल का दिन और परसों रात वाला, जो परसों रात वाली रात वो कैसी रही बताइएगा आप मुझे। 3311063 पर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अकेले अकेले मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे आप लोगों से, अगर मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे वो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे ना। 3311063 पर जियो बिंदास।

0: बताओ कैसा रहा मेरा वीकेंड। मैं बता दियो यार, मैं कह रही सुन के दादी की हाल चाल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के लिए। अब मैं तो अपना वीकेंड बता रही हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने वीकेंड पे क्या किया 3311063 पर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वीकेंड पे मेरी रेस्ट नहीं हुई। हर बार मैं आपको बता देती ना, मैंने मस्त नींद ली, लेकिन इस वीकेंड पे मेरी रेस्ट नहीं हुई। बट यस, मैंने एक्सप्लोर किया अपना फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट जो था वो खाया। क्या है कि ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, सबको लगता है कि भाई जब ब्रेकफास्ट की बात आती है तो मेरे को हर टाइम आलू के पराठे चाहिए। देखो, आलू के पराठे खा खा के मैं पैदा हुई, मतलब मम्मी खाती थी तभी, मतलब उसके बाद मैं बड़ी हुई हूँ ये कह सकती हूँ। ठीक है, आलू के पराठे खा खा के मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरा एक ये भी सीन है कि जब आप ब्रेकफास्ट करने की बात करते हैं, है ना, तो मेरे को अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो है वो, इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है, बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या एक बहुत ही टाइम से जगह मैं ट्राई करना चाह रही थी, वो जगह को मैंने ट्राई किया एंड मैंने वो ब्रेकफास्ट खाया, बड़ा मज़ा आया एंड इट वॉज फन तरीके से जो था वो मेरा वीकेंड निकल गया एंड मज़ा किया। बट नींद नहीं मिली है, बट कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे हम। ये पूरे हफ्ते में थोड़ी थोड़ी नींद जो है वो ले लेंगे और पूरी कर लेंगे। यार, फन भी जिंदगी में जरूरी है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीजें देखती हैं जो कि ज्यादातर फनी भी होती हैं। होने के चक्कर में लोग क्रिएटिव भी बहुत सारे हैं यार, मतलब भर भर के जो है वो क्रिएटिविटी इनमें है। सिमरन कौर है आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में। एंड एक रेजिग्नेशन लेटर वाला मैं पढ़ रही थी, आपको पता ना कि एक बार ये भी वायरल हुआ था, लोग क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके से जो है वो रेजिग्नेशन लिख रहे थे। तो आज मैंने रेजिग्नेशन लेटर फॉर्मेट इन 2026 क्या लिखा था, रेजिग्नेशन लेटर था उसमें लिखा हुआ था डियर एचआर इट्स डन ब्रो। मतलब इतना छोटा रेजिग्नेशन लेटर, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई रिजाइन करता है और वो लेटर लिखता है उसको कोई नहीं पढ़ता है, सबको पता होता है कि भाई तू जा रहा है तो कोई एंटरटेन जो है वो नहीं करता है। सो यार मेरे हिसाब से इतना ही शॉर्ट होना चाहिए, डियर एचआर इट्स डन ब्रो। और बताओ क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो आप इस टाइम पे, इवनिंग है और सैटरडे इवनिंग है, गर्मा गर्म इवनिंग है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? 3311106 पर आप मुझे बताइए।

भाई सोशल मीडिया क्रेजी है और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वीडियो बना रहे हैं वो भी क्रेजी है यार। अगर मैं आपको केक बोलूं तो केक के नाम पे अपने दिमाग में क्या आता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, एकदम पार्टी हो रही है, ये है वो है ना। तो और केक के साथ क्या क्या चीजें होती है, स्वीट्स होती हैं और कप केक्स एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें होती है और आप ये सारी चीजें इकट्ठे खाते हो और साथ में कुछ नमकीन चीजें होती है ना। बट एक बंदे का मैंने वीडियो देखा, वो पता क्या कर रहा था, केक पूरा केक रखा हुआ है और वो रोटी तोड़ रहा है और केक को सब्जी की तरह लगा के खा रहा है। भाई साहब क्या क्रेजी लोग कर रहे हैं और लोग खा रहे हैं यार, कुछ भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। एंड वो उस वीडियो के इतने ज्यादा लाइक्स, इतने ज्यादा शेयर्स थे, आई एम लाइक यार ये आप लोग ट्राई करके देखना, मैं नहीं करूंगी, मेरी हिम्मत नहीं है कि केक के साथ रोटी खाई जा रही है यार, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ यार। क्या आप कर पा रहे हैं बताइएगा मुझे। 3311 1063 पर सिमरन कर रहे हैं आपके साथ ही हूं बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूना हाइपरमार्केट में।
0: लूना, where the world comes to shop.

बीत जाए, अगस्त बीत जाए, सीधा नवंबर आ जाए यार। मुझे पता है कि जब मेरे मैंने ज्यादा स्किप मार दिया, सीधा नवंबर में पहुंच गई हूँ। बट यस, कांट वेट यार, कतर का मौसम जो है वो वापस से ठंडा हो जाए। हाय, बड़ा मन करता है जैकेट्स पहनने का। बट हम कतर वाले ये भी है ना कि हमारे यहाँ पे हर जगह पे एसी है, तो जैकेट्स तो हम फिर भी पहन ही लेते हैं। लेकिन या बाहर बहुत गर्मी है यार। सिमरन गौरी आओगी जी ओ बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
4: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shah Rukh.

0: Livsuno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मुझे बताइएगा कि आप इसको खाने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं, बताइएगा।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है
0: जी। आपको जो भी चीज वायरल हो रही होती है, चाहे वो खाना है, चाहे कोई और चीज है या गाना है, हर चीज के बारे में बताती हूँ। सो एक चॉकलेट, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना, एक चॉकलेट साग वाला चॉकलेट वायरल हो रहा है। अब मैंने एक और चॉकलेट देखा है, वो है बटर चिकन चॉकलेट। सीरियसली मैन, भाई तुमको बटर चिकन खाना है तो जाओ किसी रेस्टोरेंट में जाके बटर चिकन खाओ, चॉकलेट में बटर चिकन कौन घुसा रहा है यार, और कौन खा रहा है इसको? क्या आप ट्राई करना चाहेंगे बटर चिकन वाला चॉकलेट? लाइक रियली, मैं दिमाग में भी नहीं सोच सकती कि मैं इसको मतलब एक बाइट भी लूंगी इसकी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो इंदास। और बताओ कि तमन्ना है आपकी ऐसे चॉकलेट खाने की?
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: लाइफ में हमको कोई और डेट मिले ना मिले, कतर में रहते हो डेट फेस्टिवल जरूर मिल जाता है। और ये लोकल डेट्स फेस्टिवल जो है वो कतर में आज से स्टार्ट हो चुका है और ये 10th of August तक चलने वाला है। शाम को 4 से लेकर 10 बजे के बीच में टिकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। सो संडे टू थर्सडे इसकी टाइमिंग है, शाम 4 से लेकर 9 बजे तक। सो आज सैटरडे है, सो फ्राइडे एंड सैटरडे 10 बजे तक रहेगा, शाम को 4 बजे से लेके। सो एयर कंडीशन है अंदर, कोई टेंशन नहीं है आपको। लोकली ग्रोन जो डेट्स हैं वो आपको मिलेंगी, क्योंकि लोकली जो भी चीज़ें यहाँ पे उगाई गई हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। सो या गो एंड बाय। सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ठीक हूँ।
1: Gen Z, Gen Z.
2: अच्छा जी,
1: Gen Z decoded.
2: ऐसा ही क्या?
0: ऐसा ही है जी। सिमरन कौर आपके साथ Gen Z decoded में आज का वर्ड है डैंक, DANK. तो डैंक का मतलब है कि जब कोई चीज एक्सेलेंट और हाई क्वालिटी में होती है तो उसके लिए Gen Z स्लैंग जो है वो यूज की जाती है। डैंक आप भी करिएगा और कूल बन जाइएगा। बाहर का मौसम तो कूल है नहीं, आप तो कूल बन ही सकते हो यार। पानी टाइम पे पी लो, हाइड्रेट योरसेल्फ एंड सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हाय, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: फिल्म के बारे में मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बता रही हूँ ट्रिविया श्रिविया में। संजय लीला भंसाली को बोला था डायरेक्ट करने के लिए लेकिन उन्होंने नहीं की। और फिल्म के रोल की बात करें जो कि पहले ममता कुलकर्णी को भी ऑफर हुआ था नेहा का, वो मनीषा कोराला को भी हुआ था एंड उसके साथ साथ फिर महिमा चौधरी को भी हुआ था। महिमा ने मतलब वो परदेश फिल्म के चलते उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। और बॉबी देओल की पहली ये ऐसी फिल्म थी जिसमें ना तो धर्मेंद्र ना ही सनी देओल की तरफ से कोई रिकमेंडेशन जो था वो गया था, तो उन्होंने ये फिल्म जो थी वो मतलब अपने आप खुद से जो थी वो साइन की थी। इसमें कुछ फैमिली वगैरह का कुछ लेना देना जो था वो नहीं था। सो ये जो गाना जब शूट हो रहा था ना, चोरी चोरी जब नजरें मिली, आप ना ही सुनो, आप कान बंद कर लेना अभी। ओके फाइन, अभी सुन लो कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। जब ये फिल्म का गाना शूट हो रहा था तो अंडर वाटर बॉबी देओल को जो जब जाना था तो विधु विनोद चोपड़ा ने देखा कि पानी के अंदर जो है वो वाटर स्नेक है, बट उन्होंने शूट को कट नहीं बोला, क्योंकि अगर शूट को कट बोलते वो उनको बढ़िया परफेक्ट सीन जो था वो मिल रहा था नेचुरल लाइट में, वो निकल जाना था। तो जैसे ही शूट खत्म हुआ, मतलब वो वाला सीन हुआ, भाई साहब बॉबी देओल फटाफट से भागे उस जगह से। एंड या ये है अमेजिंग वाली बातें जो कि किसी भी फिल्म के साथ किसी भी गाने के शूट के टाइम पे होती हैं, जो कि हमको पता नहीं होती क्योंकि हम सिर्फ फिल्म के तरफ जो है वो ध्यान देते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं। सो या ऐसी चीजें मैं हर रोज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गॉड, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी मैं कहती सुने हो कितना दिखी हाल चाल
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है रियलिटी चेक में। आज हम बात करेंगे एक दर्द के बारे में। क्या होता है कि जब आपको कोई इंसान हिट करता है, किसी चीज से हिट करता है या हाथ से हिट करता है, वो गलत होता है ऑफ कोर्स, और जब वो आपको हिट करता है तो आपको चोट लगती है। आपको पता है कि एक तरीके का दर्द जो है वो और भी है, वो है जबान का दर्द। क्या होता है कि जब कोई इंसान आपसे कड़वे बोल बोलता है, कुछ ऐसा बोल देता है, वो समटाइम्स गुस्से में उसको नहीं लगता है, पता है कि उसको नहीं बोलना चाहिए, फिर क्या होता है कि ऐसे कुछ कुछ कभी कभी वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है वो बातें कि उसकी फिर माफी नहीं होती है। समटाइम्स इंसान माफ भी कर दे, लेकिन वो क्या होता है कि फिर वो एक्सेस आपकी लाइफ में वो इंसान जो है वो नहीं ले पाते। तो जबान की जो चोट है ना, वो सबसे बुरी चोट है, क्योंकि वो हील नहीं होती है, कभी नहीं होती है। चाहे आप जितना बोल दो, इंसान के अंदर वो दर्द हमेशा रहेगा कि तूने फलाने टाइम पे ये चीज मुझे बोली थी। चाहे आप उसको लाख बाद में मेंड करने की कोशिश कर लो, वो लेकिन वो चीजें जो है वो नहीं होती है। सो मेक श्योर कि आप किसी को भी, आपके अपने क्या, किसी को भी ऐसा कुछ ना बोले कि सामने वाला पूरी जिंदगी के लिए आपके शब्दों से जख्मी हो जाए। वाह सिमरन कौर, वाह क्या बातें करती हूँ यार, कभी कभी मैं सुनते रहो रेडियो ऑलिव पर, कहते रहो जी बिंदास। वापस लौट के मैं नेम गेम खेल रही हूँ, तो तैयार हो जाइएगा अपना नाम सुनने के लिए रेडियो पर।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्निंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

फिर बेबी डॉल नाम बोलूं आपका। चालू हो जाते लेकिन ये मेरा आपको ना लव यू 100 किलो जो है वो बैक कहने का तरीका है। ओके सो आप क्विकली अपना नाम लिखिए, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ 3311063। जी हाँ 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम देखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। विनायक, अबरार, नजीमुल्ला, यास्मीन, नाज, उमर, निदिन, अशरफ, सलीम, अक्रम जी, निर्मला जी, मोहम्मद जी, यूनस जी, नवाब जी, जितेंद्र जी। ये हाई क्यों लिख रहे हो दोस्त, अपना नाम लिखो, इतना बढ़िया मौका है रेडियो पे अपना नाम सुनने का आपका। 3311063 पर अपना नाम लिखिए। लतीफ जी थैंक यू सो मच, जितेंद्र जी थैंक यू सो मच, सोलंकी जी थैंक यू सो मच, पाली जी थैंक यू सो मच, शाहिद जी थैंक यू सो मच, महमूद जी थैंक यू सो मच, शंकर जी थैंक यू सो मच, प्रज्ञा जी थैंक यू सो मच, अतुल जी थैंक यू सो मच, शशांक जी थैंक यू सो मच, जहीर जी थैंक यू सो मच, अब्बासी जी थैंक यू सो मच, इकरा जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भी मुझे भेज सकते हैं। चलो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू आर विद
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मुझे नहीं पता कि आप में से आज कितने लोगों ने नोटिस किया, लेकिन मैंने किया। आपके साथ आज आफ्टरनून में ना कुछ टाइम के लिए, पता नहीं उससे पहले भी कितनी देर से चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ आधे पौने घंटे के लिए फील किया कि चैट जीपीटी जो था वो डाउन था। आप कुछ भी उस पर लिख रहे हो और वो आपको कोई रिप्लाई जो था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें दिखा रहा था सो मेनी रिक्वेस्ट। तो आप में से कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की, मैंने तो की, बताइएगा मुझे 3311063 पर। आप रेडियो ऑलिव को सुनी रहे हो तो एक बार चेक कर लो, क्या आपके मोबाइल में रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन है? अरे नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो आए हाय चलो फटाफट से कर लो। रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन आपके फोन में जब आप डाउनलोड कर लोगे तो इसका फायदा ये है कि आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि सिमरन आपका शो सुनने के लिए मैं कार में बैठा था। वैसे बैठे तो हाउ स्वीट यार, मतलब इतना प्यार तो कौन ही करेगा, बट फिर भी अगर आपको यू नो कहीं जाना है, रूम के अंदर जाना है, ऑफिस के अंदर जाना है, तो जाइए बिंदास। आपके फोन में अगर रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन है तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे आप, ठीक है? सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

मुझे एक चीज बताओ, जब भी कोई आप वेबसाइट देखते हो कपड़े की या किसी भी ब्रांड की, क्या देखते हो कि उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वाला फोटोशूट जो है वो हुआ होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोज जो है वो उसमें दिखाए जाते हैं। अगर आप कपड़े हैं या जूते हैं तो उसको आप बढ़िया तरीके से दिखाते हो, लेकिन एक बंदा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि उसके पोज बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, अपने कपड़ों को दिखाने का या फिर फ्लेक्स करने का या फिर शूज को दिखाने का। भाई वो इतने मतलब वियर्ड पोज दे रहा है कि वो बंदा अपने वियर्ड पोज देने की वजह से ही वायरल हो रहा है। जिस तरीके से वो सेल्फी या फिर जूते दिखा रहा है या टी शर्ट दिखा रहा है या जीन्स दिखा रहा है, जो भी उसने डेनिम पहनी हुई है, भाई अलग लेवल के फनी पोज दे रहा है। तो या अब क्या होता है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है, तो वो चीज दिख रही है, लोग उसको मतलब वो अटक गए हैं वहां पे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, फिर वो देख रहे हैं कि भाई ये अपने ब्रांड को जो है वो किस तरीके से दिखा रहा है, अलग तरीके वियर्ड तरीके से, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई करके देखिएगा नेक्स्ट टाइम। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

तो फिर दोस्तों सिमरन कौर के यहाँ से गलती बनने का टाइम आ चुका है। लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउनर चल रहा है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ट्रस्ट मी, ये होता रहता है लाइफ में। आज आपको डाउन लग रहा है, कल आपको ऐसे लगेगा आए हाय तस्काए में हूँ मैं तो, उड़ रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लाइफ में ना कभी भी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि होप जो है कभी लूज मत करना। हम इंसान हैं और इंसानों की लाइफ में ही पंगे, दुख, दुविधा, पीड़ा सब चलती रहती है, ये पार्ट है लाइफ का। बस उतना मोटिवेशन आपको देना था मुझे। मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये सुनना जरूरी है, बट मैं बोल रही हूँ यार। सो कल शाम को 5 बजे होती है आपसे मुलाकात। खांदे बिंदे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

नाम है मिडनाइट लाउंज। सो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का सबसे चार्मिंग हीरो कौन था, तो बहुत से लोग बिना सोचे समझे एक ही नाम लेंगे, विच विल बी देवानंद। लेकिन उनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं कि उनकी स्माइल और उनका स्टाइल इतना पॉपुलर था कि जो उस टाइम के यंगस्टर्स थे उन्हीं की तरह बाल बनवाने लगे, उन्हीं की तरह चलने लगे और उन्हीं की तरह स्कार्फ्स पहनने लगे। देवानंद ना सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो अपने दौर के ट्रेंड सेटर बन गए थे। और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनकी फिल्में आज भी उतनी ही अमेजिंग लगती हैं, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो तेरे घर के सामने हो, या हर फिल्म में एक अलग चार्म था उनका। ना कोई ओवर एक्टिंग, ना कोई अननेसेसरी ड्रामा, बस एक एफर्टलेस स्टाइल। सो इस वीकेंड मैंने सोचा था कि हम थोड़ा 50s और 60s में ट्रैवल करेंगे, और इवन आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये मूवीज भी दोबारा से देखूंगी। वैसे आज के एक्टर्स में ना अगर किसी में थोड़ा सा देवानंद वाला चार्म दिखाई देता है तो आपके हिसाब से कौन है वो? 3311063 माय नंबर। शुरू कर चुके हैं हम अपने सैटरडे का सफर आपके साथ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

वेलकम बैक विद अ ब्यूटीफुल ट्रैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मुस्कान है आपके साथ और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो राज कपूर की बात करते हैं थोड़ी सी. और आज मैं लिटरली 50s और 60s के ही हीरोज़ की बात कर रही हूँ और उसी मूवीज़ की बात कर रही हूँ. सो राज कपूर को हम एक्टर के रूप में हमेशा से जानते ही हैं, लेकिन उन्हें द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था. क्यों? ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है. राज कपूर ना सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाते थे, वो इमोशंस क्रिएट करते थे. उनकी फिल्म में म्यूजिक अलग होता था, स्टोरीज आम आदमी से जुड़ी हुई होती थी और हर फिल्म के बाद कोई ना कोई गाना लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ होता था. सबसे खास बात है कि राज कपूर की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी, रशिया से लेके और दूसरे देशों में भी लोग उनकी फिल्में देखने के लिए लंबी लाइंस में लगते थे. सो वहाँ आज भी जब वो गाना बजता है ना, आवारा हूँ, सुनते ही लोग राज कपूर को याद करने लग जाते हैं. बाय द वे, आई नो मेरे सुर और आवाज़ दोनों ही यू नो गाने के लायक नहीं है, लेकिन आई नो आप मेरे इमोशंस को समझ जाओगे. सो सच तो यही है कि कुछ लोग सिर्फ स्टार्स होते हैं और कुछ लोग जमाना बन जाते हैं. और राज कपूर की जब बात आती है तो उनकी कौन सी फिल्म है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव. नंबर है 3311106. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

आज जहां पर VFX और CGI का जमाने में हम मुगले आजम देखते हैं, तो शायद हमें अंदाजा ही नहीं होता कि उस फिल्म के हर सीन के पीछे कितनी मेहनत थी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। फिल्म को बनाने में लगभग 14 साल लगे थे और फेमस सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या, आई नो मैं गाना अच्छा नहीं गाती, उसके लिए जो शीश महल बनवाया गया था उसमें हजारों बेल्जियन मिरर्स लगवाए गए थे ताकि रिफ्लेक्शन बिल्कुल रॉयल लगे। सोचिए, उस वक्त ना कंप्यूटर ग्राफिक्स थे ना कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सब कुछ रियल सेट पर शूट होता था। शायद इसीलिए आज भी उस फिल्म का जो एक एक फ्रेम है वो पेंटिंग जैसा लगता है। कभी कभी मास्टरपीस ना सिर्फ टैलेंट से नहीं बनता, पेशेंस से बनता है। यू नो, आज मूवी 3 महीने में बन जाती है, आज मूवीज़ यू नो 1 साल मैक्सिमम 4 मूवी यू नो निकाल देती हैं, पर यहाँ पर 14 साल लगे थे एक मूवी को बनने में। वैसे अगर आपको मुगले आजम का सिर्फ एक गाना दोबारा सुनना हो तो वो कौन सा होगा? 3311106 3 is my number। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

तो बात करते हैं बॉलीवुड की. सो 40s एंड 50s की 60s की जो मूवीज़ हैं वो बहुत ही अलग है और आज हम उन्हीं पुरानी मूवीज़ की बात कर रहे हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. आज बॉलीवुड के सुनहरे दौर का एक और किस्सा लेकर आई हूँ. अगर सिनेमा को शायरी का रूप देने वाले किसी फिल्म मेकर का नाम लिया जाए तो उस लिस्ट में गुरुदत्त साहब सबसे ऊपर आते हैं. प्यासा, कागज़ के फूल, साहेब बीवी और गुलाम और ये सब फिल्में नहीं थी, पूरा इमोशंस था, मतलब पूरा एहसास था. इंटरेस्टिंग बात यह है कि कागज़ के फूल रिलीज़ के वक्त पर बहुत बड़ी फ्लॉप थी. लोगों ने उस वक्त उस फिल्म को उतना पसंद ही नहीं किया, लेकिन आज दुनिया भर के फिल्म स्कूल्स में उसकी सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग पढ़ाई जाती है. यानी कभी कभी एक मास्टरपीस को समझने के लिए वक्त लगता है. इवन लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता और बाद में समझ में आता है कि यार ये बेस्ट हो गया था. वैसे आपके हिसाब से आज के बॉलीवुड में कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो इमोशंस के साथ सबसे खूबसूरती से स्क्रीन पर सारी चीज़ों को लेकर आते हैं? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

Very good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. Yes, this is Midnight Lounge. और आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की जो सिर्फ गाती नहीं थी, हर एक्टर की पर्सनालिटी बन जाती थी. अब आप सोचिए, आज जब सिंगर्स गाते हैं तब आप चुटकियों में पहचान जाते हो कि किसने गाया है. मैं बात कर रही हूँ उन पुरानी सिंगिंग सिंगर्स की, एक्चुअली उसमें से मोहम्मद रफ़ी साहब की. अगर गाना शमी कपूर के लिए है तो आवाज़ में अलग ही शरारत होती थी, अगर दिलीप कुमार के लिए है तो गहराई, और अगर जॉनी वॉकर के लिए है तो फिर मस्ती. और रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो एक्टर के हिसाब से अपनी सिंगिंग स्टाइल को बदल देते थे. इसीलिए उनके गाने सुनते वक्त कभी कभी लगता है कि मतलब ये एक ही सिंगर ने गाया है, आप विश्वास ही नहीं मानेंगे. शायद इसी वजह से उनकी आवाज़ आज भी हर जनरेशन को अपनी सी लगती है. तो आप बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब का आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना कौन सा है जो आपको लगता है यार ये तो मैं कभी भी सुन सकती हूँ या गुनगुना सकती हूँ या सकता हूँ. नंबर 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मुस्कान है आपके साथ. बाय द वे, हाउ इज योर वीकेंड गोइंग? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका फ्राइडे सैटरडे जो था वो इस बार बड़ा ही प्रोडक्टिव हुआ है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि कतर में गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही, तो आप बहुत ज़्यादा आउटडोर प्लान्स नहीं बना पा रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग टॉय फेस्टिवल और अलग अलग जगहों पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्लान करते ही रहते हैं। सो आज मेरे सैटरडे की अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद को 50s और 60s में ले जाने का वादा किया था, यानी कि बॉलीवुड का 50s एंड 60s। और अगला किस्सा आपको बताती हूँ। आज के ज़माने में गाने हिट होते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद नए गाने आ जाते हैं और हम उन पुराने गानों को भूल जाते हैं, लेकिन 50s और 60s का दौर था वो कुछ अलग ही था। उस वक्त एक गाना सिर्फ चार्टबस्टर नहीं बनता था, लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता था। चाहे वो गाना है अभी ना जाओ छोड़कर, अजीब दास्तान ये गाना था, और ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये सब गाने सिर्फ फिल्मों में नहीं बजते थे, शादियों में, रेडियो पर, फिल्मी गैदरिंग्स में, हर जगह पर इनकी अलग जगह होती थी। और शायद इसीलिए आज भी जब ये गाने बजते हैं तो लगता है कि जैसे वक्त कुछ देर के लिए ना रुक सा गया है। वैसे आपके प्लेलिस्ट में आज भी गोल्डन एरा का कौन सा गाना है जो आप ज़रूर प्ले करते हो? बाय द वे, आई हैव वेरी सुपर हिट सॉन्ग फॉर यू। सुनते रहिए सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show का नाम है Midnight Lounge और आज हम 50s और 60s के Bollywood की बात कर रहे थे. So आज Bollywood का एक ऐसा एक्टर उनकी बात करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि एक्टिंग जोर से बोलने में नहीं है, सच्चाई से जीने में है. बलराज सहनी. फिल्म थी 2 बीघा जमीन. उनके लिए उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी बल्कि असली रिक्शा पुलर के साथ दिन गुजारे, उनकी जिंदगी को समझा और फिर कैमरा के सामने आए. अब आज आप आज की फिल्में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ बहुत ही एक्टिंग जैसा है, जैसे कि हीरो की बॉडी बहुत बढ़िया होती है और उसके बाद वो किसी रिक्शा वाला का रोल कर रहा होता है, लगता ही नहीं है ये कोई रिक्शा वाला है. लेकिन उनकी इस मेहनत की वजह से, जहाँ पर उन्होंने सेम कैरेक्टर जीने के लिए वहाँ पर वक्त गुजारा, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियल लगी कि आज भी उस फिल्म को इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है. आज भी मेथड एक्टिंग की बात होती है तो बलराज सहनी का नाम ज़रूर लिया जाता है. अब आप मुझे बताइए, आपको नेचुरल एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या फिर ये लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड स्टाइल करण जौहर और संजय लीला भंसाली वाले सेट्स पसंद है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Midnight Lounge.
2: ये है Midnight Lounge.

वीकेंड शुरू होता है कतर में थर्सडे की इवनिंग से और यहाँ सैटरडे की रात को खत्म हो जाता है। सो मेरा वीकेंड तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब घर जाते जाते एक बढ़िया सी कड़क चाय और फिर कल सुबह की तैयारी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो आज के आखिरी किस्से के साथ आपको बताती हूँ कि आपने कभी सोचा था कि 50s और 60s की फिल्मों में ना आइटम सॉन्ग्स थे, ना ही कोई प्रमोशनल ट्रैक हुआ करता था, फिर भी हर गाना सुपरहिट कैसे हो जाता था? उसकी वजह थी कहानी। उस दौर में ना गाने फिल्म का हिस्सा होते थे। हीरो और हीरोइंस बस डांस नहीं करते थे, गाने कहानी को आगे बढ़ाते थे। इसीलिए मधुमति हो, चोरी चोरी हो, अनाड़ी या प्यासा जैसी मूवीज हो, सॉन्ग जो है उनके आज भी उतने ही रेलिवेंट लगते हैं। शायद इसीलिए गोल्डन एरा के गाने कभी ओल्ड फैशन नहीं लगते, क्योंकि उनमें सिर्फ म्यूजिक नहीं, इमोशंस थे। सो चलिए आज के इस शो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे फिर से एक सवाल। अगर आज रात को आपको 50s और 60s का सिर्फ एक ही गाना सुनने का मौका मिले तो आप किस गाने को चूज करते? 3311106 इज माई नंबर। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, व्हाट्सएप पे हूँ मैं। सो कल मिलेंगे बहुत सारी नई कहानी और किस्सों के साथ, नए कॉन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: चांदनी

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: चांदनी

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छूं वो हवावां विच तू, दिल विच तू, साहां विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना राहां विच तू, इको आ दुआ मेरी उस रब नूं।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।